0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर, आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
2: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम.
0: आणि आज आहे सोमवार, म्हणजे मंडे मंडे आणि मंडे. और ये मंडे वाली वाइब बड़ा अजीब सी होती है यार. मतलब मन करता है कि यार उठ जाए बेड से, लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं यार, नहीं उठना है. बट करे तो करे क्या, पापी पेट का सवाल होता है. सुबह उठकर अपने को अपने काम पर निकलना ही होता है. वैसे जाकिर खान का एक कोट है, वो कहता है कि यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए, काम तो करना ही पड़ेगा. बाय द वे ये आज के वक्त का एकदम सच है, ट्रूथ है. क्योंकि कुछ भी हो जाए भाई, काम तो करना ही पड़ता है यार. घर चलाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए और अपनी जिंदगी संवारने के लिए काम तो करना ही पड़ता है. उसके सिवा कोई और चारा अपने पास है ही नहीं. आप सुबह सुबह देखिए ना एक चीज की, जब मैं ऑफिस आता हूँ ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया कि बारिश हो, सर्दी हो, धूप हो, कुछ भी हो जाए, न्यूज़पेपर वाले ना तो सुबह 4 बजे से 5 बजे से अपने काम पे लग जाते हैं. रोड सफाई करने वाले लोग अपने काम पे लग जाते हैं, दूध वाले लोग अपने काम पे लग जाते हैं, सब कुछ लोग अपने अपने काम पर सुबह सुबह चले आते. मतलब सुबह का एक वक्त होता है जब लोग नींद से उठकर सबसे पहले प्रायोरिटी अपने काम को ही देते, क्योंकि भाई जिंदगी उसी से चलती है. सो आज है मंडे, और मंडे के दिन अगर ऐसे ख्याल आता आपके माइंड में भी आ रहे होंगे ना, यार मंडे आ गया, करे तो करे कि ऑफिस जाना है, भाई थोड़ा दर्द उठाइएगा और ऑफिस के लिए निकलेगा. क्योंकि आज आप ऑफिस पहुंचोगे तो क्या पता कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा हो भी जाए. इस उम्मीद में ऑफिस के लिए निकलना कि यार होप सो सब बढ़िया रहे. एंड मैं भी दुआ करूंगा कि आपके लिए आज आपका मंडे बेहतरीन तरीके से गुजरे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर एंड स्टे ट्यून.

किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। कभी सोचा है हम जिंदगी में दुखी क्यों होते हैं? कई बार वजह सिर्फ ये होती है कि हमने किसी और से उम्मीद रख ली होती है। सोचा था कि वो कॉल करेगा, नहीं किया। सोचा था कि वो समझेगा, नहीं समझा। सोचा था कि वो साथ देगा, लेकिन वक्त पर गायब हो गया। पर सच ये है कि लोग अपने हिसाब से जीते हैं।

हिसाब से नहीं, तो उम्मीद भी हमें अपने आप से रखनी चाहिए। जब आप खुद से उम्मीद रखते हो तो आप हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो। कभी किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कभी किसी के जवाब का मोहताज नहीं बनना पड़ता। और यकीन मानिए, जो इंसान खुद से उम्मीद रखकर आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे दूसरों की ज़रूरत नहीं, उनकी प्रेरणा बनता है। तो अगली बार अगर कोई आपको इग्नोर करे, कोई आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, बस एक काम करना, आईने में देखना, खुद को मुस्कुरा के कहना, तू है ना मेरे साथ, बाकी सब बोनस है। सो वो कहते हैं ना, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, देन यू विल बी हैप्पी। विदाउट एक्सपेक्टेशन से जिंदगी गुजारिए और मुस्कान की चमकान एग्जैक्टली अभी जैसे आपके चेहरे पर आ रही है ना, वैसे ही रखिए। और बाकी तो सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ किस्सों का कारवा।

0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर, आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
2: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम.
0: और इस वक्त ना तो हम एक गेम खेलते हैं जो बहुत ही प्यारा होता है, जिसके अंदर ना मैं और आप दोनों कनेक्ट हो जाते हैं. और इस गेम का नाम है
3: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी.
0: और इसके अंदर मैं आपको एक पहेली पूछता हूँ और आप मुझे उसका एकदम सही जवाब बताते हो. सो आज की पहेली कुछ ऐसी है कि अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं. बोलो वो क्या चीज है. फिर से दोहराता हूँ कि अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं. बोलो वो क्या चीज है. और इसका जवाब है ना, मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगा, आप मुझे इसका जवाब बताओगे डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर. और इस पहेली का जवाब बताइए, जो सबसे पहले जवाब देगा उसे ही गिफ्ट मिलेगा. सो देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए और सुनते रहिए.

0: जब तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तब तक चेहरे पर मुस्कान ओरिजिनल नहीं दिखेंगी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। सो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है अभी डॉक्टर मानसी करसगांवकर, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी एंड लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, मेरा सवाल आज आपसे ये है, सो मैम, जिस इंसान को डिप्रेशन है तो वो इसमें से बाहर कैसे निकल सकता है?
1: देखिए, सेल्फ अवेयरनेस तो जरूरी है, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहा है दैट मींस कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रमाण थोड़ा कम है। इन दैट केस सबसे पहले आता है फैमिली और फ्रेंड्स, जो लोग नियर एंड डियर वंस है उन लोगों के, उनका अवेयरनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हों जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए, तो दे नीड टू बी गुड लिसनर्स। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनका इंटेंशन जरूर अच्छा होता है, लेकिन वो अनोइंगली अनइंटेंशनली ऐसे कुछ चीजें बोल देते हैं जो कि द पेशेंट विद डिप्रेशन इज नॉट येट रेडी टू रिसीव। ऐसा भी होता है कि बस उनको एक्सप्रेस करना होता है पेशेंट्स को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन सामने वाले सजेशंस देने लग जाते हैं। तो ये एक चीज है जो हम सब ने रिफ्रेन करनी चाहिए। एंड देन द पेशेंट नीड्स टू टॉक टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। एंड ये भी याद रखिए, मतलब अगर किसी को डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो रहे हो तो खुद को आइसोलेट मत करना। जैसे ही फील होने लग गए कि मुझे किसी से नहीं बात करने का मन कर रहा है, तो जरूर आप थोड़ी देर मत बात करना, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चिंतन मनन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना खुद में, एंड देन गो आउट देयर एंड ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई टू टॉक टू योर फैमिली। ऑल्सो जब खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, जब भूख नहीं लग रही है, फिर भी वन नीड्स टू टेक केयर कि वो मिनिमम जो नॉर्मली खाना खाते हैं और जो नॉर्मल टाइम है उनका, उनको वो स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। भले ही मन नहीं हो रहा है, भले ही भूख नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना खा लेना चाहिए। भले ही नींद नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत सो लेना चाहिए, कि जैसे बेड पे लेटे लेटे आंख ही बंद कर लो, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम खुद में या किसी और में ये सिम्टम्स देखने लगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने हमारा जो रेगुलर स्केड्यूल है लाइफ का, वो हमने जारी रखना चाहिए, उसमें हैम्पर नहीं होने देना चाहिए।
0: तो मैम ने जो बातें बताई वो याद रखिएगा, उसको समझिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ वेल रखिएगा। बाकी तो जब तक आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा ही। सो आपके सवाल पूछिए हमें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और मुस्कुराते रहिए एंड स्टे ट्यून।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरजी अदनान आपके साथ है और वक्त हो चुका है आपकी फरमाइशें पूरी करने का इन द शो ऑल इज वेल इस वक्त ना तो मैं आपकी सारी गानों की फरमाइशें पूरी करता हूँ। तो आज की गाने की फरमाइश आई है बंटी जा

यार, रफी साहब की आवाज में गाना है, तो चलिए फिर बंटी भाई की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो हमें बिंदास व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि इस शो में आपकी सारी फरमाइशें पूरी होती है। सो फिलहाल बंटी भाई की फरमाइश पर बाहरों फूल बरसाओ ये गाना प्ले करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

जीटी अपडेट में बहुत ही बढ़िया और टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक अपडेट है अपने शहर के लिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल अब अपनी बिजली का बिल भी और अपनी महावितरण भी स्मार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महावितरण ला रहा है स्मार्ट मीटर का

लेवल अपडेट। अब अगर किसी एरिया में पावर कट हुआ तो सिस्टम खुद बता देगा कि फॉल्ट कहां पर है। मतलब आप कंप्लेन करने के लिए किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल करने के बावजूद भी सामने वाले महावितरण के कर्मचारी कॉल कुछ उठाते नहीं थे। और सुनो, ये स्मार्ट मीटर ने अब तक अपने शहर में 32% फिट कर दिए है और बचे हुए भी जितने भी एरिया में ये स्मार्ट मीटर रहेगी वो जल्द से जल्द मिटाने का काम शुरू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्मार्ट मीटर ओवरलोड भी डिटेक्ट करेगा। मतलब घर में एक साथ एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चार्जर या टीवी ऑन है तो मीटर बोलेगा, भाई बस कर, मैं भी इंसान हूँ। मतलब उसके ऊपर भी लोड आता है ना। और हाँ, महावितरण का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा नहीं आएगा, वरना लोगों का ऐसा मानना था कि स्मार्ट मीटर बिठाएंगे तो बिल बहुत बढ़ेगा। लेकिन घर पर ज्यादा लोड होगा तो भाई बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही ना। यानी कि टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो रही है, बस अब एक ही दुआ है, बिजली जाने से पहले व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाए तो एक बढ़िया होगा। ऐसे भी अगर कुछ सिस्टम निकाल दिया ना, धन्य हो जाएंगे हम महावितरण के लिए। स्टे ट्यून।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
3: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

0: सिंगल यूज प्लास्टिक आणि कोणतेही प्लास्टिक यूज करणे खूप घातक आहे, हानिकारक आहे, पण हे आपल्याला समजतच नाहीये. यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. All is well. इसी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक कैरी बैग भी यूज करना पूरी तरीके से बैन है. और पिछले कुछ महीनों में अपनी छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका एकदम एक्शन मोड पर आई है और प्लास्टिक मुक्त अपना शहर करने के लिए शुरुआत की है. इसी के साथ जिलाधिकारी ऑफिस में एक नया रूल लागू हुआ है जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आप कोई भी यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो प्लास्टिक के बोतल में पानी आता है वो पानी आप कोई यूज नहीं करेगा, उसके सिवा ऑफिस के फिल्टर से ही पानी यूज करें या फिर अपने घर से स्टील की बोतल लेकर आए. ये एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो चुका है. इसका मोटिव यही है कि जो प्लास्टिक के बोतल में पानी आता था तो प्लास्टिक भी उसमें यूज होता था, इस वजह से शुरुआत उन्होंने खुद से की है और पूरे ऑफिस में प्लास्टिक यूज नहीं करने का एक प्रण लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो ये शुरुआत की है अपने जिलाधिकारी ऑफिस के अंदर से. तो ऐसी शुरुआत ना तो मैं और आप भी कर सकते हैं अपने अपने ऑफिस से. हर ऑफिस में अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी हमने बंद कर दिया और ऑफिस के फिल्टर से या स्टील की बोतल से पानी पीना शुरू कर दिया तो प्लास्टिक अपने आप अवॉइड हो जाएगा, वो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे और इस वजह से बहुत सारा बदलाव हो सकता है. अब आप सोचोगे कि इतने छोटे चीज से क्या ही बदलाव होगा, बूंद बूंद से दरिया भरता है. उसी तरीके से शुरुआत तो करके देखिएगा, हमारे ऑफिस में आपके ऑफिस में भी हम ये चीजें शुरू कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक मुक्त शहर अपना बनाने के लिए हम सभी थोड़ी सी हेल्प कर सके. तो क्या कहते हो, ट्राई करोगे ना? जरूर करेगा. और अवॉइड कीजिए अपने ऑफिस में भी ऐसे प्लास्टिक बॉटल से पानी पीना और फिल्टर यूज कीजिए ताकि प्लास्टिक यूज ही नहीं होगा और इससे अपना शहर एक दिन जरूर प्लास्टिक फ्री हो जाएगा. समझे? स्टे ट्यून. ऑल इज वेल आरजे नानका मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM.
1: Attention future researchers and innovators.
2: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्ष तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.

0: सकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ा, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
5: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

0: सिकंदर हम सभी ने देखी है दोनों पार्ट, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर कहानी खत्म हुई है सेकंड पार्ट के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा रुकिएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM क्योंकि मेकर्स ने अभी एक बड़ा सस्पेंस हवा में छोड़ दिया है। धुरंधर द रिवेंज के बाद लग रहा था कि सबको यार फिल्म अब यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, सक्सेसफुल तो फिल्म हो गई है, लेकिन अब चल रही है डिस्कशन धुरंधर 3 पर। फिल्म की जो को प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे, इन्होंने रिसेंटली एक ऐसी बातों में कह दिया था एक न्यूज से कि धुरंधर की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है और इस साल के एंड तक ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में बातें शुरू है कि रणवीर सिंह फिर से अपने पावरफुल अवतार में दिखाई देंगे, जसकृत सिंह के अवतार में कमबैक करने वाले हैं। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना ये प्रोजेक्ट OTT पर भी आ सकता है इस साल के बीच में या तो फिर एंड तक। सिंपल लैंग्वेज में बताए तो पॉपकॉर्न रेडी रखो, क्योंकि धुरंधर यूनिवर्स अभी और धमाका करने वाली है आने वाले वक्त में, यानी कि इस साल के एंड तक। और बेसिक फिल्मी गॉसिप, फिल्मी अपडेट के लिए, गर्मा गर्म अपडेट के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कि RJ अदनान के साथ।
1: Researchers and innovators,
2: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus, it's LLB Nantarkara, LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshit tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906-7-6-1-2-0-0.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.

एम्प्लॉइज काम कम करते लेकिन चुगलियां ज्यादा करते हैं। कौन किसकी बुराई कर रहा है, कौन मीटिंग में शाइन करने के लिए किसका आइडिया ले गया, ये गेम सब जानते हैं। और हाँ, कई बार लगता है कि मुझे भी जवाब देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या तू लड़ने आया है या चमकने। ऑफिस में पॉलिटिक्स एक रियलिटी है, लेकिन तेरा फोकस रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना होना चाहिए। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे यार, लेकिन जवाब हमेशा काम देता है। जब तू शांत रहकर भी बेस्ट परफॉर्म करता है, वो सबसे बड़ा रिवेंज होता है। याद रख, तू काम करने आया है, वॉर लड़ने नहीं। और जो लोग शांत रहकर चमकते हैं, उनकी रोशनी सबसे तेज होती है। तो अगली बार जब कोई बैक स्टेप करे तो बस आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुझे टॉप पर पहुंचना है और वहां कोई भीड़ नहीं होती, क्योंकि टॉप पर एक ही इंसान होता है। सो ये जो चुगलियां करने वाले होते ना, इन्हें उनका काम करने दे, बस तू इन पर फोकस मत कर। क्या है ना, इंसान को कोई चिढ़ा रहा हो, अगर हमने उस पर रिएक्ट किया ना, सामने वाले को और ताकत आती है, उसे लगता है कि यार इसे परेशानी हो रही है और इसके मजे लेने में मजा आएगा। लेकिन हम जब रिएक्ट करना बंद कर देते हो ना, तो अपने आप सामने वाला इंसान भी खामोश होता है, क्योंकि उसे तो पता चल जाता है कि यार इसको कुछ भी बोलो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना जो ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं और इसकी उसकी चुगली करते हैं, इन्हें उनका काम करने दे। तू तेरे काम पर फोकस कर, क्योंकि टॉप पर पहुंचना है, और ऐसे लोगों से दूर रहे। इतना ही मैं कहूंगा। समझ मेरी बात को मेरी जान।

0: तू तो फंडा हीरो निकला बत्रा, मान गई
1: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

0: आपको पता है, आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजे अदनान आपके साथ है।
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकातें तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजे अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी ब्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार, मैं ज्ञानी आदमी हूं, RJ अदनान ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे। सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।

மார்னிங் சத்ரபதி சம்பாஜி நகர் அது நான் தும் சே சுபதாக இந்த ஷோ ஆல் இஸ் வெல் அரே और शो के स्टार्टिंग में ना तो हम एक गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम है और इसमें मैंने आपको एक पहेली पूछा था। तो पहेली कुछ ऐसी थी कि अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं, बताइए ये क्या चीज है। और इसका जवाब है नारियल। जी हाँ, नारियल। प्यास लगी तो पी सकते हैं, भूख लगे तो इसको खा भी सकते हैं, ठंड लगने के बाद सूखने के बाद इसको जला भी सकते हैं। तो नारियल इसका सही जवाब है और एकदम सही जवाब दिया है श्वेता जाधव ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता जी, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो श्वेता जी तो आज विनर बन गए। अगर आपको भी ऐसे विनर बनना है तो मेरे सवालों के जवाब यानी कि पहेलियों के जवाब देते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ा, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
5: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well.
1: Morning show. Freshness light radio flow. On MGM 90.8 FM.
0: RG अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RG अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RG अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: future researchers and innovators.
1: MT University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
0: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
1: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM University Institute of Indian and Foreign Language लेकर आया है BA Honors in English, MA English, MA Marathi, MA Hindi, MA Urdu, MA Sanskrit, PG Diploma in Arabic, Diploma Programs, Creative Writing in English, Sanskrit, French, German, Urdu, Japanese, Persian and Translation.
2: Limited seats available. Visit www.mgmu.ac.in or call करे 9763-67-9245 और 9665353515.
4: हर दिल की आवाज बने.
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
4: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे.
5: ये दूरियां,
4: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात. MGM 90.8 FM साथ है तो

0: जैसे वो सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूँ साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।

अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए इंजन 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: से वह सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। सबसे पहले आप सभी को एक प्यारी सी हैप्पी मंडे इवनिंग। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा। सोमवार का नाम सुनते ही कई लोगों को काम, भाग दौड़ और लंबी टू डू लिस्ट याद आती है, लेकिन शाम का ये वक्त सिर्फ आपका है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, चाय या कॉफी का कप हाथ में लीजिए और अगले दो घंटे सिर्फ म्यूजिक, बातें और अच्छी वाइब्स के नाम कर दीजिए। कभी कभी मंडे हमें ये याद दिलाता है कि नई शुरुआत किसी भी दिन हो सकती है। अगर आज कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता अभी बाकी है और हर शाम अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम बातें करेंगे दिल की, सुनेंगे आपके फेवरेट गाने और साथ बिताएंगे कुछ हल्के फुल्के मुस्कुराते पल। अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या फिर ट्रैफिक में फंसे हैं या घर पर आराम कर रहे हैं तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, अपने परिवार को भी बोलिए स्माइल करो क्योंकि मंडे खत्म होने वाला है। और अब शुरुआत करते हैं शानदार गानों की और एंजॉय करते हैं ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ ही तो बात है

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही एक चीज सबसे ज्यादा याद आती है, ठंडी ठंडी लस्सी। सच बताइए, एक बड़ा सा ग्लास, ऊपर मलाई की लेयर और हर सिप में ठंडक, बस मूड ही फ्रेश हो जाता है। आजकल की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम कोल्ड ड्रिंक्स या फैंसी बेवरेजेस के पीछे भागते हैं, लेकिन जो सुकून देसी लस्सी में होता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। गर्मी में जब धूप तेज होती है, शरीर थक जाए और मन बस कुछ ठंडा ढूंढ रहा हो, तब बस एक ग्लास लस्सी सिर्फ ड्रिंक नहीं, पूरी राहत का एहसास बन जाती है। और सबसे अच्छी बात, ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। किसी को मीठी लस्सी पसंद है, किसी को नमकीन, और कुछ लोग तो ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालकर पूरी रॉयल फीलिंग लेते हैं। वैसे अगर लस्सी मिट्टी के कुल्हड़ में मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, हमारी सबसे प्यारी मेमोरीज अक्सर छोटी छोटी चीजों से ही जुड़ी होती है। गर्मी की छुट्टियां, घर की बनी लस्सी, परिवार के साथ बैठकर बातें, ये मोमेंट दिल को हमेशा कूल रखते हैं। तो इस समर थोड़ा खुद को भी रिफ्रेश कीजिए, मोबाइल और स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक लीजिए और किसी दिन आराम से बैठकर एक बढ़िया सी लस्सी एंजॉय कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कुछ और अमेजिंग गानों की तरफ, ओनली ऑन एमजी 90.85। साथ ही तो बात है,

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। वेल, आज की बात छोटी है लेकिन अगर इसे जिंदगी में अपना लिया जाए तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं और इंसान की पहचान भी बनती है। और वो बात है, जो कहो वो करो। आजकल हम सब बहुत जल्दी वादे कर लेते हैं, कल मिलते हैं, मैं ज़रूर मदद करूंगी, मैं टाइम पर पहुंचूंगी एंड ब्ला ब्ला। लेकिन कई बार बातें सिर्फ बातों तक ही रह जाती है। सच कहूँ तो लोगों को आपकी बड़ी बड़ी बातें नहीं, आपकी छोटी छोटी सच्ची आदतें याद रहती है। अगर आप कहते हैं कि आप किसी के साथ हैं तो मुश्किल समय में साथ दिखाई भी देना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे तो फिर एक दिन थोड़ा थोड़ा काम भी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भरोसा शब्दों से नहीं एक्शन से बनता है और जो इंसान अपनी बात की कीमत समझता है लोग भी उसी की उतनी इज्जत करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही बातें धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। समय पर पहुँचना, किसी को जवाब देना, आपके काम को पूरा करना, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। तो इस हफ्ते खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, जो बोलेंगे उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि सच्ची बातें करना आसान है लेकिन उन्हें सच में जीना ही इंसान को खास बनाता है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास जो इंसान को बदल भी देता है और मजबूत भी बना देता है, और जब ये प्यार सच्चा होना तो फिर दिल यही कहता है, अगर प्यार किया तो डरना क्या। पुराने दौर के गानों की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उनमें सिर्फ संगीत नहीं, जज्बात भी होते थे। ऐसे गाने आज भी लोगों के दिलों में इसलिए जिंदा है क्योंकि वो हमें खुलकर जीना और दिल की बात कहना सिखाते हैं। कभी कभी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन बातों का डर इतना बढ़ जाता है कि लोग अपने इमोशंस छुपाने में लग जाते हैं। लेकिन सच्चा प्यार हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, डर नहीं। और प्यार सिर्फ किसी इंसान से नहीं होता, प्यार तो अपने सपनों से, अपने काम से, अपनी जिंदगी से भी होना चाहिए। जब दिल साफ हो और इरादे सच्चे हो तो हर इंसान मुश्किल का सामना मुस्कुराकर कर लेता है। वैसे भी जो बातें दिल से निकलती है उनका असर हमेशा खास होता है, इसीलिए कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो दिलों की यादों और फीलिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत शाम में प्यार, हिम्मत और दिल की बातों को सेलिब्रेट करते हैं, और अब वक्त है उस एवरग्रीन एहसास को महसूस करने का, कुछ शानदार गाने को सुनने का। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
2: एमजीएम यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशंस 2026 एंड 2027। तसेच एलएलबी नंतर करा एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
1: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेव्हल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
2: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। आज की फास्ट लाइफ में हम सब अपने काम, मोबाइल और स्ट्रेस में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने शरीर और सेहत के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। लेकिन एक चीज है जो शरीर को फिट भी रखती है और मन को फ्रेश भी, और वो है स्पोर्ट्स। बचपन में याद है ना, शाम होते ही बैट, फुटबॉल या बैडमिंटन लेकर बाहर निकल जाते थे हम। ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, बस खेल और खुशी। असल में खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, ये हमें डिसिप्लिन, टीम वर्क और पेशेंस भी सिखाते हैं। जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, पसीना बहाते हैं, तब सिर्फ बॉडी नहीं माइंड भी स्ट्रांग होता है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रोज थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स से बॉडी एक्टिव रहती है, एनर्जी बढ़ती है और मूड भी अच्छा रहता है। और सबसे खास बात, खेल हमें मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा दूर ले जाते हैं और रियल लाइफ से जोड़ते हैं। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन, कबड्डी या सिर्फ सुबह की साइकिलिंग, हर खेल अपने साथ पॉजिटिविटी लेकर आता है। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल प्लेयर बने, बस खेलने की आदत बनाइए। तो दोस्तों, इस हफ्ते खुद को एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, थोड़ा वक्त अपनी हेल्थ के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हैप्पी माइंड रहता है। और सुनते ही कुछ एनर्जेटिक सॉन्ग्स ओनली ऑन एमसीयू 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधता है इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजे युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड ML, M.Tech Data Science आणि Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
2: Admissions open. For more information call on 9404-94299.
1: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
3: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
1: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनहीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध। आजच भेट द्या
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने से बॉडी फिट रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेल सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन और ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन हो गई है। कभी काम का प्रेशर, कभी पढ़ाई की चिंता, तो कभी पर्सनल लाइफ की परेशानियां। ऐसे में दिमाग को भी एक ब्रेक चाहिए होता है और यही काम स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से करता है। जब हम खेलते हैं ना, तो कुछ देर के लिए सारी चिंता पीछे छूट जाती है। बस ध्यान रहता है गेम पर, एनर्जी पर और उस खुशी पर जो खेलते समय महसूस होती है। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, रनिंग हो या सिर्फ दोस्तों के साथ थोड़ी देर आउटडोर गेम्स, ये सब मूड को फ्रेश कर देते हैं। स्पोर्ट्स हमें पॉजिटिव बनाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और अंदर की नेगेटिविटी को दूर भी करता है। सबसे अच्छी बात तो ये है खेल की कि हमें लोगों से जोड़ता भी है। नई दोस्ती, टीम वर्क और साथ में हंसना, ये छोटी छोटी चीजें दिल को हल्का कर देती है। कई बार एक घंटा मैदान में बिताना पूरे दिन की टेंशन कम कर देता है। तो दोस्तों, अगर कभी माइंड हैवी लगे तो सिर्फ मोबाइल स्क्रोल मत कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, खेलिए, चलिए, दौड़िए। बिलीव मी, आपका मन खुद बेटर फील करेगा, क्योंकि हेल्दी माइंड और हैप्पी हार्ट के लिए थोड़ा खेलना भी बहुत जरूरी है। और सुनते हैं कुछ अमेजिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन एमजी। मेरी पॉइंट फिल्म साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, आज की दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन्स हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। काम हो, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, हर चीज स्क्रीन पर हो रही है। लेकिन इसी बीच हम एक बहुत जरूरी चीज धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वो है आउटडोर गेम्स। याद है वो बचपन की शामें जब एक आवाज आती थी, चल नीचे खेलते हैं, और बस पूरा मूड फ्रेश हो जाता था। सच कहे तो रोज सिर्फ एक घंटा आउटडोर गेम्स खेलना हमारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम घर के बाहर खेलते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, तो शरीर एक्टिव रहता है और मन भी खुश रहता है। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग या सिर्फ पार्क में थोड़ी दौड़, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज स्ट्रेस कम करती है, एनर्जी बढ़ाती है और हमें हेल्दी बनाती है। और सबसे खास बात, आउटडोर गेम्स हमें रियल दुनिया से जोड़ते हैं, सिर्फ वर्चुअल दुनिया से नहीं। आजकल कई लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों, दिन के 24 घंटों में अगर सिर्फ एक घंटा अपनी हेल्थ और खुशी के लिए निकाल ले तो जिंदगी और भी महसूस होने लगती है। तो आज एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं, रोज कम से कम एक घंटा आउटडोर खेलेंगे, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या अकेले, लेकिन बाहर जरूर आएंगे, क्योंकि असली रिफ्रेश बटन सिर्फ फोन में नहीं, कभी कभी मैदान में भी मिलता है। चलिए दोस्तों, इसी एनर्जेटिक और हैप्पी वाइब के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन MG Radio। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। तो दोस्तों धीरे धीरे ये मंडे भी अब अलविदा कहने वाला है। सुबह की भागदौड़, काम का प्रेशर, मीटिंग, ट्रैफिक और पूरे दिन की थकान के बाद आखिरकार दिन खत्म होने जा रहा है। सच कहे तो मंडे को लोग थोड़ा मुश्किल दिन मानते हैं। वीकेंड के बाद फिर से रूटीन में वापस आना आसान नहीं होता, लेकिन हर मंडे हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है, नई उम्मीदें, नए प्लान्स और कुछ नए करने की एनर्जी। अगर आज का दिन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है और हर नया दिन अपने साथ नई पॉजिटिविटी लेकर आता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर दिन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा जाता है। तो अब इस मंडे को मुस्कुरा कर बाय बोल दीजिए। जो अच्छा हुआ उसे याद रखिए और जो थोड़ा मुश्किल था उसे एक्सपीरियंस समझ कर आगे बढ़ जाइए। आज रात थोड़ा खुद को रिलैक्स कीजिए, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, फैमिली से बातें कीजिए और कल के लिए खुद को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, क्योंकि वीक की शुरुआत भले ही मंडे से होती है लेकिन उसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में होता है। तो चलिए दोस्तों इसी प्यारी सी फीलिंग के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का, गुड बाय मंडे और वेलकम नई उम्मीदों वाली ट्यूजडे। स्टे ट्यून्ड एंड जिम नाडी पॉइंट एफएम साथ है तो बात है।
1: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
2: एमजी यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशंस 2026 एंड 27। दिस इज एलएलबी LLM, Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

टीटी अपडेट में बहुत ही बढ़िया और टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक अपडेट है अपने शहर के लिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। All is well. अब अपनी बिजली का बिल भी और अपनी महावितरण भी स्मार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महावितरण ला रहा है स्मार्ट मीटर का नेक्स्ट लेवल अपडेट। अब अगर किसी एरिया में पावर कट हुआ तो सिस्टम खुद बता देगा कि फॉल्ट कहां पर है। मतलब आप कंप्लेन करने के लिए किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल करने के बावजूद भी सामने वाले महावितरण के कर्मचारी कॉल कुछ उठाते नहीं थे। और सुनो, ये स्मार्ट मीटर ना अब तक अपने शहर में 32% फिट कर दिए हैं और बचे हुए भी जितने भी एरिया में ये स्मार्ट मीटर रहेगी वो जल्द से जल्द मिटाने का काम शुरू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्मार्ट मीटर ओवरलोड भी डिटेक्ट करेगा। मतलब घर में एक साथ एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चार्जर या टीवी ऑन है तो मीटर बोलेगा, भाई बस कर, मैं भी इंसान हूँ। मतलब उसके ऊपर भी लोड आता है ना। और हाँ, महावितरण का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा नहीं आएगा, वरना लोगों का ऐसा मानना था कि स्मार्ट मीटर बिठाएंगे तो बिल बहुत बढ़ेगा। लेकिन घर पर ज्यादा लोड होगा तो भाई बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही ना। यानी कि टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो रही है, बस अब एक ही दुआ है, बिजली जाने से पहले व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाए तो एक बढ़िया होगा। ऐसे भी अगर कुछ सिस्टम निकाल दिया ना, धन्य हो जाएंगे हम महावितरण के लिए। स्टे ट्यून।

रिड्यूस प्लास्टिक आणि कोणतेही प्लास्टिक यूज करणे खूप घातक आहे, हानिकारक आहे, पण हे आपल्याला समजतच नाहीये. यु आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. All is well. I tell the Nanaka morning show. Freshness light radio can flow. On MGM 90.8 FM. इसी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक कैरी बैग भी यूज करना पूरी तरीके से बैन है. और पिछले कुछ महीनों में अपनी छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका एकदम एक्शन मोड पर आई है और प्लास्टिक मुक्त अपना शहर करने के लिए शुरुआत की है. इसी के साथ जिलाधिकारी ऑफिस में एक नया रूल लागू हुआ है जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आप कोई भी यूज नहीं करेगा, यानी कि जो प्लास्टिक के बोतल में पानी आता है वो पानी आप कोई यूज नहीं करेगा. उसके सिवा ऑफिस के फिल्टर से ही पानी यूज करे या फिर अपने घर से स्टील की बोतल लेकर आए. ये एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो चुका है. इसका मोटिव यही है कि जो प्लास्टिक के बोतल में पानी आता था तो प्लास्टिक भी उसमें यूज होता था. इस वजह से शुरुआत उन्होंने खुद से की है और पूरे ऑफिस में प्लास्टिक यूज नहीं करने का एक प्रण लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो ये शुरुआत की है अपने जिलाधिकारी ऑफिस के अंदर से. तो ऐसी शुरुआत ना तो मैं और आप भी कर सकते हैं अपने अपने ऑफिस से. हर ऑफिस में अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी हमने बंद कर दिया और ऑफिस के फिल्टर से या स्टील की बोतल से पानी पीना शुरू कर दिया तो प्लास्टिक अपने आप अवॉइड हो जाएगा, वो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे और इस वजह से बहुत सारा बदलाव हो सकता है. अब आप सोचोगे कि इतने छोटे चीज से क्या ही बदलाव होगा, बूंद बूंद से दरिया भरता है. उसी तरीके से शुरुआत तो करके देखिएगा, हमारे ऑफिस में आपके ऑफिस में भी हम ये चीजें शुरू कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक मुक्त शहर अपना बनाने के लिए हम सभी थोड़ी सी हेल्प कर सके. तो क्या कहते हो, ट्राई करोगे ना? जरूर करेगा. और अवॉइड कीजिए अपने ऑफिस में भी ऐसे प्लास्टिक बॉटल से पानी पीना और फिल्टर यूज कीजिए ताकि प्लास्टिक यूज ही नहीं होगा और इससे अपना शहर एक दिन जरूर प्लास्टिक फ्री हो जाएगा. समझे? स्टे ट्यून.

धुरंधर हम सभी ने देखी है दोनों पार्ट, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कहानी खत्म हुई है सेकंड पार्ट के बाद? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा रुकिएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM क्योंकि मेकर्स ने अभी एक बड़ा सस्पेंस हवा में छोड़ दिया है। धुरंधर द रिवेंज के बाद लग रहा था कि सबको यार फिल्म अब यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, सक्सेसफुल तो फिल्म हो गई है, लेकिन अब चल रही है डिस्कशन धुरंधर 3 पर। फिल्म की जो को प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे, इन्होंने रिसेंटली एक ऐसी बातों में कह दिया था एक न्यूज से कि धुरंधर की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है और इस साल के एंड तक ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में बातें शुरू है कि रणवीर सिंह फिर से अपने पावरफुल अवतार में दिखाई देंगे, जसकृत सिंह के अवतार में कमबैक करने वाले हैं। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना ये प्रोजेक्ट OTT पर भी आ सकता है इस साल के बीच में या तो फिर एंड तक। सिंपल लैंग्वेज में बताए तो पॉपकॉर्न रेडी रखो, क्योंकि धुरंधर यूनिवर्स अभी और धमाका करने वाली है आने वाले वक्त में, यानी कि इस साल के एंड तक। और बेसिक फिल्मी गॉसिप, फिल्मी अपडेट के लिए, गर्मा गर्म अपडेट के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कि RJ अदनान के साथ।

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
1: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बा

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM।